0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m.
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
1: City FM 89.
2: Trending today.
4: Google parent company Alphabet has launched Gemini 4 Argon, a new AI model built to handle a variety of tasks, such as coding, research, and writing. But it's cybersecurity that Gemini 4 Argon is supposed to have a particular knack for, according to Google. Once considered behind in the AI race, Google has recently enjoyed success with Gemini. The company announced in August that its app had over 1 billion users per month.
5: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड बस बॉटल को स्कैन करो स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन स्किन और किस्मत दोनों चमकाए देखा ना मिरेकल्स हैपन
6: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है मैं चाहूंगा कि आप अपने तमाम टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें शौकत खानम लैब से टेस्ट शौकत खानम कराची की तकमील
7: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून तो ले आए मॉसपेल क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर